0: दुनिया की कोई ताकत अब मुझे तुमसे अलग नहीं कर सकती रानी।
1: लेकिन राजा, मैं तो तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। नहीं,